जनो व्याकसाके अय पमा नामक ननमो श्यांग तवाते यन हकमो ओ विन माक तवन लाव येते हाय हाय हाय हाय।